वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हेल हेल गुरु रामदास एंड हील द वर्ल्ड, हेल हेल गुरु रामदास एंड हील द वर्ल्ड, हेल हेल गुरु रामदास एंड हील द वर्ल्ड। पीस टू ऑल, लाइफ टू ऑल, लव टू ऑल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Let's bless the langar.

ते पाठ दीदार दा ध्यान करके खास जी बोलो जी सतनाम। पंजा प्यारिया चौहा साहिबजादिया चालिया मुक्तिया हटिया जपिया तपिया जिन्हां नू नाम जपिया वन शकिया तेग जलाई तेग वाही तेके अंडर कीता।

सिंगा सिंगणिया ने तरम हे चीज टिठे बन बन कटाए कोपरिया लुहाइया चरकरिया ते चरे तन आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया जी सेवा लई कुर्बानिया।

सिखानु सिखी दान केश दान रहत दान विवेक दान विसा दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इश्नान चौकिया चुंडे पुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सतनाम सिख द मनी वद मत उची मत दारा का आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ

बिन नावै को बेली नाही, पुत कुटुंब सुत पाई। नानक माया मोह पसारा, आ गए साथ न जाई। हौ पूछो अपना सतगुर दाता, किन बिद दुतर तरिया राम। सतगुर पाए चलो जीवत्यां, एव मरिए राम। जीवत्यां मरिए पौ जल तरिया,

हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनाओ करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मुको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम

अनेक तेरी अनेक करहें अर पूजा जी, तब ताप हैं जपे व्यंता तेरे अनेक पढ़े वो सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खाट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद परम प्रकर्ता जी, तू जे वड़े अवर न कोई, तू जुग जु एको सदा सदा तू एको जी, तू नह चल करता सोई, तुद आपे पावे सोई वरतै जी, तू आपे करें सोई, तुद आपे सृष्ट सब पाई जी, तुद आपे सिरज सब कोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानो आसा महला चौथा, तू करता सच्यार मंडा साई, जो तौ पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनों कृपा कर

हमारे तारी है, चुन चुन शत्र हमारे मारी है, आप आद मुझे भरी है। छात्र

think we went the wrong seven. Vaheguru. Tum karta sachar maida sai, asa mahala chota, tum karta sachar maida sai, joto pave soi tisi, jotun hai soi ho pai raha. Sab teri tu, sab nitya aaya, jisna kripa karhe tin naam hai ratne paya, gurmukh lada, marmukh vaya, tud aap vichodya, aap milaya, tum darya sab tujhe hi maa hai, tujh bin duja koi na hai, jiya jan sab tera khel, vijogmul vichodya sanjogi mel, jisna tu jaan aaye, soi jan jaan hai, har gun sad hi aakh vakhane, chin har sevya, tin sukh paya, sahaje hi har naam samaya, tu aape karta tera kiya sab hoye, tud bin duja avar na koye, tu kar kar vikhe jaane, soi jan nanak gurmukh pargat hoye, assa mahala pahla, tit sarvarada pehlane vasa, paani paavag tin hai kiya, pankaj moh pag nahi chale, hum dekhte dubiyale, मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुग्धा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जंतु नाही विसरिया राग अस असम हला पंजवन पाई परापत मनुख दहुरिया गोबिंद मिलन की यह तेरे बरिया अवर काज तेरे कित न कामिल साध संगत भज केवल नाम सरन श्याम लाग पव जल तन कै जन्म मृत जाकर माया कह रहा जप तप संजम धर्म कमाया सेवा साधन जन हर राया कहु नानक हम नीचे कर्मा सरण परे की रखो शर्मा एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतह है पातशाही दसवीं कवियो बाज पैंती चौपाई हमारी कर हते रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमारे दुष्ट से भय तुम खावो आप हाते मोह बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सखे सब कर तारा मोर छान ज कर दे करिए सब पैरन को आज संगारिये पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो वर छाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सखे हमारे तरह है छुन छुन सतर हमारे मरिये आप हाते मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये उज सदा हमारे पच्छा श्रिय सदजु कर रचा रख लो मोह रख नहारे साहेब संत भाए प्यारे तीन बंधु स्टन के हंता तुम पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बतरा काल पाए शिव जो बतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जु गीसव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जा छन उपजायो हद अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसे को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चिट्टी ते कुंचल अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उन्द करख करा कर तारा प्रज तरत तब दे अपारा जब आ करख करत हो कबहू तू मैं मिलत दे धर सब हूँ जित बदन सृष्ट सब तारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही तर हत निरालम जनत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताक मूढ़ उछारत पेदा जाको पेव न पावत वेदा ताको कर पाहन अनुमानत महां मूढ़ कछ पेद न जानत महादेव का कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह पिव आप आपनी बुध है जेति बरनत पिन पिन तुह तेति तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा हे कह रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहि पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी काहू फूल रजा है बैठा कहूं सुमट पयो शंकर कैठा सिगर सृष्ट दिखाया संभव आजुगात स्वरूप स्वयंभव अबरछा मेरी तुम करो सिखियो बारिया सिख संगरो दुष्ट जितै उठवत उत पाता सकल मलेच का रोरन गाता
ਜਿਹਾ ਸਿੱਤ ਜਿੱਤ ਵਿਸਰਣੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਿਖਿਤ ਫੈ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕਾਇਕ ਬਾਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨੈ ਹੈ ਰਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ਟ ਟਨੈ ਤਤ ਕਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹਨ ਹਰਿ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੈਂ ਹਰਿ ਹੋ ਰਿਦ ਸਿਧ ਕਰ ਮੋ ਸਵ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਛਾ ਸਵ ਸਕ ਨ ਕੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ਤਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮਾ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਥਾਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸਭ ਰਾਤਾ ਕਿਲਵਿਕ ਸਕਲ ਦਹੇ ਕੋ ਹਰਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਨੇ ਕੋਛੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਦੁਜ ਜਵ ਪਾਏ ਦਿਆਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ ਮੁਨ ਬੰਛਤ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਦੁਖ ਨਤ ਸਵ ਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜਿਲ ਸੁਨੇ ਗੁੰਗ ਜੋ ਅਹੇ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ ਸੁਨੇ ਮੂੜ ਚਿਤਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਪਉ ਨਿਕਟ ਨਤ ਨਰ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਆਕੀ ਇੱਕ ਬਾਰ ਚੋਪੈ ਕੋ ਕਹੈ ਸਵਿਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਹੈ ਮਤ ਏਕਨ ਮਨਿਓ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਾ ਹਮ ਏਕਨ ਜਾਨਿਓ ਸ੍ਰਿਯਸ ਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਨ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਨਿਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ

सब गवाइया कर संत सुख मन आय वस्या जन इच्छा सब पुजाया सदा कुरबान कीता गुरु विटहो जिस्ति आय वडाया कहे नानक सुनो संतो सब तरो पियारो सच्चा नाम राधारो वाज पंच सबद तित कार सपागे कार सपागे सबद वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुरकार पाया तुद जिन को सुनाम हर के लागे कहे नानक तह सुख तिथ ग्रहण हत वाजे वृंदावनी महला पंजवा ताल विच तन वसतु पाइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठकुर का पाइयो जिसका सब से धारो जे को खावे जे को बुंछे तिसका होए उदारो हे वस्तत जीन जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनो जोग कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई

तिते तू समरत जिते कोई नाहे, ओत तेरी रख अग्नि उदर माहे, सुन के जम के तूत अनाय तेरे छोड़ जाहे, पाओ जल बिखम सगाओ गुरु सदी पारे पाहे, जिनको लगी प्या समृत से कहे, कर में हो मुन गुण गोविंद गाय, सबसे न कृपाल संभाल साय साय, बिरता कोई न जाए जियावे तुद आहे। श्लोक महला पंजवां, अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाव, नेत्री सतगुरु पेखना सुवनि सुनुना गुरु नाव, सतगुरु से तीरतिया दरगह पाए ठाव, कहो नान कृपा करे जिसनो हेवत दे, जग में उत्तम का दिए विल के महला पंजवां, रखे रखना हा।